एक शक्ति बटुली नामै हराए पछि खोला उठ्दछ वर्ष वर्ष रुली कैदी बनाए पछि छाँगा जुट्दछ खोचबाट बिजुली बत्ती नपाए पछि डाँडा उठ्दछ स्वप्नमाथि दशकौँ

करी पांच बजे अपडेट में दिन संरक्षण मुद्रण केन्द्र को कार्यकारी निर्देशक में देवराज ढुंगाना नियुक्त हुनु भएको छ। मंत्री परिषद बैठक में केन्द्र को कार्यकारी निर्देशक में ढुंगानालाई नियुक्त करने निर्णय गरेको सरकार का प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले गोरखापत्र संस्थान को महाप्रबंधक में एकमत रावलाई नियुक्त गरेको छ। यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरी का 8 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को पनि सरुवा गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित पारदर्शी उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधि अनुकूल बनाउने उद्देश्य सहित सरकारले राष्ट्रीय विज्ञापन नीति 2083 स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत संचार माध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता एआई को प्रयोगबाट